شفيع ولا شفيع لعلهم

بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع

0: कहो क्या हम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पुकारें जो ना हमारा भला कर सके ना बुरा, और जब हमको अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखा दिया तो क्या हम उल्टे पांव फिर जाएं? फिर तो हमारी ऐसी मिसाल हो जैसे किसी को जिन्नात ने जंगल में भुला दिया हो और वो हैरान हो रहा हो और उसके कुछ रफीक हों जो उसको रास्ते की तरफ बुलाएं कि हमारे पास चला। कह दो कि रास्ता तो वही है जो अल्लाह ने बताया है और हमें तो ये हुक्म मिला है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमाबरदार बने, और ये भी कि नमाज पढ़ते रहो और उससे डरते रहो, और वही तो है जिसके पास तुम जमा किए जाओगे, और वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को तदबीर से पैदा किया है, और जिस दिन वो फरमाएगा कि हो जा तो हश्र बरपा हो जाएगा, उसका इरशाद बरहक है, और जिस दिन सूर फूंका जाएगा उस दिन उसी की बादशाहत होगी, वही पोशीदा और जाहिर सबका जानने वाला है और वही दाना है खबरदार है।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

ॻाल्हाइण जो ॿियो मरहलो अॼु थींदो. ईरानी वफ़द स्पीकर बाकर कालीबाब जी सरबराई में ज़ेरिच पहुची वियो. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस बि स्विट्ज़रलैंड रवानो. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ आला सतह वफ़द सां गॾु ज़ेरिच रवानो थी वियो. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान अमरीका टेक्निकल ॻाल्हियुनि में हिसो वठंदा. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस चयो आहे त ईरान सां ॻाल्हियुनि बाबति मामला सुठे तरीक़े सां हली रहिया आहिनि. आमना हुरमुज़ में तेल जी सप्लाई जंग खां अॻु वारी सूरत हाल ते वापसि अची वई आहे.

घरों में हथियार बदानी फायरिंग में पुलिस एहलकार शहीद। भरोसर कॉलोनी रोड से मोटरसाइकिल सवार हथियार बदन गोली हणी बिन पुलिस एहलकारन के शहीद कर छो। शहीद एहलकारन की टंडवाल वासी अकबर मरी ए मजीद मरी तौर सुणप। बिन्हीं एहलकारन के डेढ़ महीनों अगो SSP टंडवाल दिलीप बदर कर ठठो माणे हो। SSP ठठो साजिद अमीर KT न्यूज से गाले चो तो वाक्य सिजल से पेश आयो है। टन मोटरसाइकिल सवार हथियार बंधन एहलकारन के फायरिंग कर शहीद किया। हथियार बंधन पारा शहीद एहलकारन या सरकारी हथियार खड़ी वन वे मामले की जांच जारी है। जवाबदार की गिरफ्तारी लाए इलाके की नाकाबंदी भी की है। वे वजीर मुराद अली शाह बिन एहलकारन की शहादत जो नोटिस वटेंदे IG सिंध का वाक्य की रिपोर्ट तलब कर वरती। जवाबदार की गिरफ्तारी लाए सर्च ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। वे वजीर चो है तो बुजदलानियन कार्रवाई से पुलिस जौसला कमजोर नथा थी सकन। कातलन के जल्द गिरफ्तार कर कानून के कटहरे में वो।

0: लाख हद ताईं पाणी जी कोट कोटड़ी बैराज डाउन स्ट्रीम में 1.5 महीने का पानी छोड़ मुकमल तुर्त बंद है। दरिया के पेट में वारी उडामना लगी। कोटड़ी बैराज मथे वेकरो 18,195 क्यूसिक हेठे वेकरो 0 रिकॉर्ड कराची वाह फुलेली पिंजारी ए फुलेली वाहन में पानी की शदी खोट हैदराबाद बदीन सजावल टंडो मोहम्मद खान में कमंद ए फुटन जहा फसलों सुखी वह पानी न अचण की सूरत में इलाके में सूरत हाल खराब थन कच्छो। लाहौर की दहशत टुट अदालत 9 मई पुलिस गाड़ियों सहन वाले केस जो फैसलो बताए छो। शाह महमूद कुरैशी भरी यासमिन राशिद उमर सरफराज चीमा एजाज चौधरी के 10 साल कैद की सजा। लाहौर की दहशत टुट अदालत कोट लखपत में केस जो
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

ਨਾਲ ਹੱਕ ਅਲੇਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਜ਼ਾਤ ਨਿਰਾਲੀ।

है सफर मेराज का एक मौजज़ा सबसे अलग।

0: सेण मां कहिड़ो वखर विहायो
1: काफ़ पाहीं ॾियां
2: वापसि किरणी भाउ।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अतकड़िया वालिया बावा ते मेरा मौला बैन कुचैया होंदा। अतकड़िया वालिया बावा ते मेरा मौला बैन कुचैया।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हाँ
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: पहजो शहर पहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
3: GFM 90.8

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फौती अमीर बख्श चावरी जनाजो कारो घुंगड़ो सिम नाले मां गुजारियो पियो। गोठाणो जो चवण आहे त इंतज़ामिया जिन अहली लाइ हिकु पुल बि ठाराए रान ॾिनी वई। गोठ में ॿिनि बुनियादी सहूलतुनि जी खोट सबबु ज़िंदगी अज़ाब बणियल आहे। मटियारी भरिसां नौजवान जो सिंधु दरिया मां लाश हथ कचे में काठियूं करण लाइ वियल हाला पुराणा वासी आयूब भटी बुरी फौत थी वियो। लाश घर पहुचण ते रोज ॾाढो

तुम्हारे पारे हूँ जिना अश्क न

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੇ

بل میں چاہین اللہ تے من پشائین تہیہ قربان۔

ஓடிய ஹரிஹன் சாஜேரோ मन पुशन बो भेरो ये कुर्बानी केर थो पागल कजी तो दिया ओ हियो सारू हथन मनी खा विलायत में अग्यों अजीबल ओ तेरी मान चवल कही कुर्बानी केर थो

हालेलुया।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: मां के ॾेखारियूं पिया वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बर्गिन स्टाक पहुतल आहिनि। अमरीका ऐं ईरान तकनीकी मुज़ाकरात जे हवाले सां बर्गिन स्टाक पहुतल आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द सां गॾु स्विट्ज़रलैंड जे शहर स्टाक पहुतल आहिनि। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां गॾु मौजूद आहिनि। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल ईरान अमरीका गार्डन जे ॿिए दौर में शिरकत कंदा ऐं उते पहुतल आहिनि। ताज़ा तरीन फोटेज असीं अव्हां खे ॾेखारियूं पिया। ईरान सां ॻाल्हाइण लाइ स्टेविटकोफ ऐं चेट कुशनर अॻु खां स्विट्ज़रलैंड में मौजूद आहिनि, जिथे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बर्गिन स्टाक पहुतल आहिनि, जिथे ईरान अमरीका जंग जे हवाले सां मुज़ाकरात थी रहिया आहिनि। वज़ीर आज़म स्विट्ज़रलैंड पहुची वियो आहे। आला सता तकरीब में शिरकत करण लाइ वज़ीर आज़म स्विट्ज़रलैंड जे शहर स्टॉक पहुतल आहिनि। अव्हां खे लाइव ॾेखारियूं पिया। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जे ॿिए दौर में शिरकत लाइ बर्गिन स्टॉक पहुतल आहिनि। शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक खां पोइ हाज़िर थींदासीं। ॾिसंदा रहो केटीएन न्यूज़।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

مجھے اکبر پہ سر عطا کر, میری بہن کی حسرت ہے مالک,

खुद को ही पहचानने आया, साजन खुद को जानने आया, काम न था कोई और, जानबूझकर अपने आप से इश्क लड़ाने आया, अर्श से खाकी फर्श पे साजन प्रीत निभाने आया, सूली पर मंसूर बना और प्रीत जताने आया, सच्चू इस संसार में साजन

0: अर्श की लामहदूद वसतों से फर्श खाक पर आकर मोहब्बत निभाने वाला शायर, सच्चन सरमस्त मयाना कद, साफ रंगत, खूबसूरत आंखें, लंबे बाल, सफेद लिबास, सर पर सब्ज टोपी, हाथ में असा, सारा दिन इबादात, दुरूद और वजाइफ में मसरूफ रहता।
1: ढोलक पर थाप पड़ती सारंगी के सुर से सकते, अलगोजे से सोस बिखरता तो वो बेताब हो जाता। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती, कभी बेताब होकर उठता और कभी बेचैन होकर एक तारा उठा के खुले मैदान में चला जाता और इश्क को सरमस्ती में झूमता, नाचता, गाता रहता।
0: इश्क की सरमस्ती और सरशारी में सारी कायनात निगाहों से ऊझल हो जाती और सिर्फ सच बाकी रह जाता, जो सरासर सरमस्ती और सरशारी में बसता। ये सचल सरमस्त की जात होती, मोहब्बत, उल्फत, चाहत और इश्क के हकीकी में डूबी हुई जात।
2: मिसले गुल हूँ और मेरी खुशबू है तू, या सराबे आरजू हूँ और रमे आहू है तू, मौजे पेचा हूँ किनारे जू है तू, दुश्नए तकदीर हूँ मैं जुम्बिशे अब्रू।

0: ये कौन, यही सच्चल की शायरी का मरकज व महवर है। मौजू के एतबार से सच्चल का कलाम हमा ओस्त और मंसूरी मसलक का तर्जुमान है।
1: सच्चल का ज्यादातर कलाम रिंदी, बेबाकी, जज्ब और सरमस्ती का आईनादार है। इसमें कैफो दिलकशी, हुस्न रंगीनी कूट कूट कर भरी हुई है और कभी कभी इज्जो इंकसारी और कहीं कहीं हुस्न इश्क।
0: साई सच्चल सरमस्त के नजदीक सच्ची लगन, दुख और मुसीबतें झेलने से ही तालिब विसाले महबूब से हमकिनार।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: उठी तरस तड़ियाई वगुनी गरजो, उठी तरस तड़ियाई वगुनी गरजो, पांजे नढड़े अदे अली असगर जो। उठी तरस तड़ियाई, उठी तरस तड़ियाई वगुनी गरजो, पांजे नढड़े अदे अली असगर जो। उठी तरस तड़ियाई तो जे उठड़े अदां कर खैर धनी, ये दुआ थी घुरां पांजा हड़ा धनी। तो जे उठड़े अदां कर खैर धनी, ये दुआ थी घुरां पांजा हड़ा धनी। शलतो के बिडे रब उम्र घनी, जोरो जल्द पहुंचाए जाए दिल पर जो। ओठी तरस सजाए वगोनी कर जो, ओठी तरस सजाए वगोनी कर जो, पांजे नढड़े अदे अली असगर जो। ओठी तरस सजाए वन पहुंचंदे जाते वन्यनो थई, मुझी कैल सदा के मन्यनो थई। वन्य पहुंचंदे जाते

दगजो ओठी तरस सजाए भगोनी गरजो ओठी तरस सजाए भगोनी गरजो पांच नढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस सजाए चयो ओठी अप्र अहवाल तडस बाबा बाबा करे करी कान थी बस चयो ओठी अप्र

हर हर जो ओठी तरस सजाए भगोनी गर जो पांज नंढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस सजाए चयो साईं सुगरा नाम अथन अबो बाबा हुसैन इमाम अथन चयो साईं सुगरा

नवर जो ओठी तरस सजाए भगोनी गर जो ओठी तरस सजाए भगोनी गर जो पांजे नढड़े अते अली असगर जो ओठी तरस सजाए लफ्ज़ बचड़िया जान जब बुधन लगो ओठी बे अख प्यार थी रोन लगो लफ्ज़ बचड़िया

0: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

इस्लामाबाद मफामती यादाश्त नामे ते बेमरेली ला गालियूं स्विट्जरलैंड के शहर बर्गन स्टाक में जारी गालियों में वजीर आजम शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक नायब अमरीकी सदर जेडेविन सरबराह में सरबराही में स्ट्रोविटकोफ ए जर्ड कुशनर मौजूद ईरानी वफद के सरबराही में स्पीकर बाकर कारीबाज सरबराही कर रहे हुआ है ईरानी फड़ई वजीर अब्बास सदाकची ईरानी मरकजी बैंकिंग जो गवर्नर ए बया मौजूद

मां बेनज़ीर भुट्टो जो 73 जन्म ॾियारो मल्हायो पियो वञे। मुख़्तलिफ़ शहरनि में सालगिरह जा केक काटिया विया। सिंध असेंबली शहीद बेनज़ीर भुट्टो खे जनम ॾियारे जे मौक़े ते भेटा पेश करण वारो ठहराउ इतफ़ाक़ किराए सां मंज़ूर करे वरितो। गढ़ी ख़ुदा बख़्श भुट्टो में शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी मज़ार ते क़ुरान ख़्वानी बि कई वई। कंबर, कंदकोट ऐं ॿियनि शहरनि में केक काटे शहीद बेनज़ीर भुट्टो खे भेटा पेश कई।

शहीद बेनज़ीर भुट्टो शमूलियत के नवा दग डा जरूरत डिनी क्यादत जहां नवा दरवाजा खोलिया अथ नजरियो अज पाकिस्तान के मुस्तबिल ला रहनुमाई है कौम के जमूरियत खिदमत ए उम्मीद की अलामत तौर याद करे थी। बिलावल भुट्टो जरदारी चो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक जमहूरी तरक्की पसंद चैन सूबन की जंजीर हुई मजबूत वफाक पाख्तियार मुल्क आइन की बालादस्ती शहीद बीबी जो नजरियो हो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: जीएफएम 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: FM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफां एक अहम ऐं शानदार कैरियर मौक़ो पेश कयो वञे थो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौज़िस पोस्ट लाइ काबिल तजुर्बेकार ऐं ज़िम्मेवार उमीदवारनि खां दरख़्वास्तूं तलब कयूं वञनि थियूं। GAFM हिकु अहिड़े प्रोफेशनल फर्द जी ॻोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट, टीम लीडरशिप ऐं ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मज़बूत सलाहियतूं रखे ऐं इदारे खे बहितर अंदाज़ में अॻिते वधाए सघे। ख़्वाहिशमंद उमीदवार पंहिंजी CV फौरन व्हाट्सएप ज़रिए मोकिलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौको है। देर न करियो, अॼु ई अप्लाई करियो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज़।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
3: GFM 88 Network, सिंध की आवाज़।

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88

ওঠি তরস তনয় ভগুনি গরজো ওঠি তরস তনয় ভগুনি গরজো পাঁচ নঢড়ে আদে অলি আসগর জো ওঠি তরস তনয় ওঠি তরস তনয় ভগুনি গরজো পাঁচ নঢড়ে আদে অলি আসগর জো ওঠি তরস তনয় तुझे उठड़े अदम कर खैर धनी ये दुआ थी गुरा पाजा हड़ा धनी तुझे उठड़े अदम कर खैर धनी ये दुआ थी गुरा पाजा हड़ा धनी शल तो के बिडे रब उम्र घनी जोरो जल्द पहुंचाए जाए दिल पर जो ओठी तरस सजाए भगोनी गरजो ओठी तरस सजाए भगोनी गरजो पांच नढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस सजाए वन पहुंचंदे जाते वणणो थई मुजी कयल सदा के मणणो थई वन पहुंचंदे जा

नदग जो ओठी थर सर सजाए भगोनी गरजो ओठी थर सर सजाए भगोनी गरजो पांच नढड़े अदे अली असगर जो ओठी थर सर सजाए चयो ओठी अप्र अहवाल दस बाबा बाबा करे करी कानती बस चयो ओठी अप्र

हर हर जो कोठी तरस सजाए भगोनी कर जो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो कोठी तरस सजाए चयो साइन सुगरा नाम थम अब बाबा हुसैन मामो थम चयो साइन सुगरा।

नवर जो ओठी तरस सजाए भगोनी गर जो ओठी तरस सजाए भगोनी गर जो पांजे नढड़े अते अली असगर जो ओठी तरस सजाए लफ्ज़ बचड़िया जान जड बुधन लगो ओठी बे अख्तियार थी रोण लगो लफ्ज़ बचड़िया जान जड बुधन लगो ओठी बे अख्तियार थी रोण लगो खतनी दुस न्याणी आ चवण लगो खतनी दुस न्याणी आ चवण लगो मां गुलाम हुसैन जे दर जो ओठी तरस सजाए वगोनी घर जो पांजे नढड़े अते अली असगर जो ओठी

न ठाहिण वारी मौक़िफ़ ते सहियूं करे छॾियूं आहिनि। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त ईरान सदाई वाज़े कयो आहे त हू एटमी हथियार नथो ठाहिणु चाहे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो त अमरीका खे इहा ॻणती आहे त ईरान वटि एटमी हथियार न हुजनि। शहीद सुप्रीम लीडर बि सदाई वाज़े कयो हो त हू एटमी हथियार नथो चाहे। तय थियल मफ़ामती यादाशनामे जूं समूरियूं शिकूं ईरान जे मफ़ाद में आहिनि। क़तर में मंझंदि ईरान जा $6 अरब जा असासा बहाल कया वञनि। इस्लामाबाद मफ़ामती यादाशनामे ते ॿिए मरहले जी ॻाल्हियुनि दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ नायब अमरीकी सदर जे डी विंस विच में मुलाकात। स्विट्ज़रलैंड जे शहर बर्ग स्टाक में मुलाक़ात दौरान फील्ड मार्शल आसम मुनीर बि मौजूदु। अमरीकी नायब सदर जे डी विंस चयो त असां पाकिस्तान सां मुहबत कंदा आहियूं, पाकिस्तान अमन लाइ बहितरीन किरदारु अदा कयो आहे। अमरीकी नायब सदर अमरीकी सदर विच में ओभर बाबति ख़ासि नुमाइंदो स्टीव विटकोफ, डोनाल्ड ट्रंप जो नाटी जेड कुशनर बि मौजूदु हो।

इस्लामाबाद मफामती यादाश नामे ते बेमरे ला गालियूं स्विट्जरलैंड के शहर बर्गन स्टॉक में जारी। गालन में वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बशरी, नायब अमरीकी सदर जेडेविन की सरबराही में स्टीव विटकोव जेड कुशनर मौजूद। ईरानी वफद की सरबराही में स्पीकर बाकर कालीबाज सरबराही कर रहा है। ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची, ईरानी मरकजी बैंक जो गवर्नर ए बिया मौजूद। ईरान इस्लामाबाद मफामती यादाश नामे के बे दौर की गाल में लबनान में जंगबंदी के मरकजी नुकतों करार दई छो। ईरानी परदेही वजारत के तर्जमान इस्माइल बाकाई है त अमरीका लबनान में जंगबंदी यकीन बहण में नाकाम रो है। असासन की बहाली ईरानी तेल का पाबंदी जो खात्मो मुतालबा भी गाल हिस्सों होंदा।

भुट्टो जो 73 जन्म ॾियारो मल्हायो पियो वञे। मुख़्तलिफ़ शहरनि में सालगिरह जा केक काटिया विया। सिंध असेंबली शहीद पिंड जी भुट्टो खे जनम ॾियारी जे मौक़े ते भेटा पेश करण वारो ठहराउ इतफ़ाक़ी राय सां मंज़ूर करे वरितो। गढ़ी खुदा बख़्श भुट्टो में शहीद पिंड जी भुट्टो जी मज़ार ते क़ुरान फ़ानी बि कई वई। कंबर, कंदकोट ऐं ॿियनि शहरनि में केक काटे शहीद पिंड जी भुट्टो खे भेटा पेश कई वई।

पीपीएमपी नईम खरल कैंसर स्वाब कराची निजी अस्पताल में लड़ानो करे पो नईम खरल केतरी अरसे का जिगर ए कैंसर की बीमारी में मुबला हो नईम खरल पीपल्स पार्टी की टिकट तीए चूंडियो पो।

लाड़काने में पाणी खोट ऐं औरतुनि जे कतलेआम ऐं ज़मीनुनि ते वालार ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली अवामी तहरीक ऐं सिंधी तहरीक जी सॾ ते कापुरनि जनाह बाग खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी। अॻवाननि जो चवणु आहे त पंजाब जा फ्लड केनाल्स खोले सिंध जे हिसे जो पाणी ग़ैर क़ानूनी तौर ते रोकियो पियो वञे। सिंध में धाड़ियल राज खे सरकार जी सरपरस्ती हासिलु आहे, माण्हू घरनि में महफ़ूज़ न आहिनि।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जीए एफएम 90.8 सकरण नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौके पेश कर वने थो। जीए एफएम 90.8 सकरण नवाबशाह थे स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवार का दरख्वास्तों तलब कई वन थी। जीए एफएम एक अड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जो मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौके आए देर न करियो अभी अप्लाई करियो। जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।
2: हर चप्पा हर गोशा
3: जीए एफएम 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अति याददाश्त नामे ते बे मरले जी गालन दौरान वजीर आजम जी ईरान ए अमेरिका जे वफदन सा धारदार मुलाकातू। स्विट्जरलैंड जे शहर बर्गन स्टॉक में पाकिस्तानी वफद पारा मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम।

शिक्यान चयो आहे त ईरान सदाई वाज़े कयो हू एटमी हथियार नथो ठाहिण चाहे। ईरानी सदर मसूद पशिक्यान जो चवण हो त अमरीका खे इहा गणती आहे त ईरान वटि एटमी हथियार न हुजनि। शहीद सुप्रीम लीडर बि सदाई वाज़े कयो हो त हू एटमी हथियार नथो चाहे। तय थियल मफ़ामती याददाश्त नामे जूं समूरियूं शिकूं ईरान जे मफ़ाद में आहिनि। कतर में मंजमन ईरान जा $6 अरब जा असासा फौरन बहाल कया वञनि।

शहीद बेनज़ीर भुट्टो औरतुनि लाइ सियासी शमूलियत खे नवां दग ॾिना, जुरत ॾिनी ऐं क़यादत जा नवां दरवाज़ा खोलिया। संदसि नज़रियो अॼु पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल लाइ रहनुमाई आहे। क़ौम खेसि जमहूरियत, ख़िदमत ऐं उमेद जी अलामत तौरु यादि करे थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हिकु जमहूरी, तरक़ी पसंद ऐं चइनि सूबनि जी जंजीर हुई। मज़बूत वफ़ाक, बाख़्तियार मुल्क ऐं आइन जी बालादस्ती शहीद बीबीअ जो नज़रियो हो। सिंध जे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इना मेमन चयो आहे त अमरीका ईरान मुआदे में फील्ड मार्शल जो किरदार बहितरीन रहियो। दुनिया में पाकिस्तान खे अमुन पसंद मुल्क तौरु सुञातो वञे थो। पाकिस्तान समूरी दुनिया में अमुन आणे रहियो आहे। विचोबर में अमुन लाइ पाकिस्तान अहम किरदार अदा कयो। सिंध असेंबली में ॻाल्हाईंदे शर्जील मेमन चयो त शहीद राणी जी सोच ऐं विज़न अॼु बि नौजवाननि लाइ मशाल राह आहे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो सॼी ज़िंदगी आवाम जो आवाज़ बणिजी गुज़ारी। शहीद राणी पहिरीं औरत वज़ीर आज़म बणिजी सियासी क़यादत जी तारीख़ लिखी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क खे मिज़ाइल टेक्नोलॉजी ऐं लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम ॾिनो।

पीपल्स पार्टी एम पी ए नईम खरल कैंसर सबब कराची के एक खानगी अस्पताल में लाडानो कर वो। नईम खरल केतरे ही अरसे का जिगर ए कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो। नईम खरल पीपल्स पार्टी की टिकट ता पंज भेरा एम पी ए चूंडियो वो। सनभर से कोयले की खान में बोरत फौत खान में लहन दौरान ड्रम जो जंजीरू टुटी पयू। हादसे सबब जुम्मन ए नादर राजड़ फौत थी वया। फौत थियल पोरतन जा लाश जरूरी कार्रवाई लाए मकामी अस्पताल मुंतकिल किया वया। सामारो भरसा शादी का इनकार ते नारी मंगे दे हथा कुहाड़ी हणी कतल। गोठ गुलाम हुसैन खोसो में जवाबदार गुलाम रसूल खोसो पंजी मंगे दी असमा खोसो के कतल करे छड़ियो। लाश जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले। वाकई जो केस दाखिल।

धारो वेझो शहीद थियल बिन पुलिस अहलकारनि जी जनाज़ नमाज़ टंडो अलिहार में अदा कई वई। शहीद अहलकारनि अकबर मरी ऐं मजीद मरी जी सरकारी एज़ाज़ सां तदफीन सलामी बि पेश। शहीद पुलिस जे वारसनि शहीद अहलकारनि जी शहादत वारे वाक़े जो ज़िमेवार टंडो अलिहार ऐं ठठे जे एस एस पी खे करार ॾेई छॾियो। वारसनि जो चवण हो त एस एस पी टंडो अलिहार ॿिन्ही पुलिस अहलकारनि खे ज़िले बदर कयो, जंहिं सबबु हू परेशान हुआ। एस एस पी ठठो अहलकारनि खे अहिड़े हंधि मुक़ररु कयो जिते केर बि वञण लाइ तयारु

0: Idaho.
1: कंबर ऐं लखी गुलाम शाह में आईबीए टेस्ट पास उम्मीदवारनि पारां ऑफर आर्डर निमरण ख़िलाफ़ एहतजाज। उम्मीदवारनि जो चवण हो त इम्तिहान में 40 खां वधीक मार्कूं खणी पास थिया आहियूं, 4 साल खां ऑफर आर्डर न पिया ॾिना वञनि। समूरी सिंध में केतिरे ई वक़्त खां एहतजाज करे रहिया आहियूं, पर सरकार तदारुक नाहे कयो। लाड़काणे में पाणी खोट औरतुनि जे कतलेआम ऐं ज़मीननि ते वालार ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली, अवामी तहरीक ऐं सिंधियाणी तहरीक जे सॾ ते कारकुननि जनाबाग खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी। अॻवाननि जो चवणु आहे त पंजाब जा फ्लैट कैनाल खोले सिंध जे हिसे जो पाणी गैर क़ानूनी तौरु रोकियो पियो वञे। सिंध में धाड़ियल राज खे सरकार जी सरपरस्ती हासिलु आहे, माण्हू घरनि में बि महफ़ूज़ न आहिनि। कंबर में प्रिया कुमारी जी आज़ादी लाइ जसकम जो एहतजाज। ॿारनि जंजीर पाए शिरकत कई। कारकुननि क्रिकेट ग्राउंड खां प्रेस क्लब ताईं एहतजाजी रैली कढी मुज़ाहिरो कयो। अॻवाननि जो चवणु हो त सरकार 5 साल गुज़रण बावजूद प्रिया कुमारीअ खे बाज़ियाब नाहे कराए सघी। प्रिया जी अमड़ दाहूं कंदे मासूम धीउ बाज़ियाब कराइण जूं अपीलूं करे रही आहे। प्रिया कुमारी सिंध जी नियाणी आहे। खेसि जल्द आज़ादु न करायो वियो त सॼी सिंध में एहतजाज कंदासीं।

सेठा जा मां चार महीननि खां मुबैन अगवा ॼाणियल निंगरी बाज़ियाब न थी। आसफा मुगल जी बाज़ियाबी लाइ वारसनि पारां प्यादल मार्च। सेठा जा मां निकतल नारीअ जा वारिस SSP खैरपुर ताईं प्यादल मार्च कंदा। वारसनि जो चवणु आहे त पुलिस रुगो आसरा ॾेई रही आहे, निंगरी बाज़ियाब कराए परेशानी ख़तमु कई वञे।

0: पंहिंजी थकावट लिकाए औलाद जी मुस्कुराहट में सुकून ऐं ज़िंदगी ॻोल्हण वारी अज़ीम हस्ती पीउ खे लखे सलाम। अॼु दुनिया में पीअरनि जो आलमी ॾिहाड़ो मल्हायो पियो वञे। पीउ जी मुहबत, रहनुमाई ऐं बेलोस क़ुर्बानीनि खे सलाम, जेको औलाद खे सुखियो सताबो रखण लाइ सख़्तियूं ऐं तकलीफ़ूं बर्दाश्त करे थो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौके पेश कर वने थो। जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्तों तलब कई वने थियूं। जीए एफएम एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में आहे, जेको मीडिया मैनेजमेंट, टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतूं रखे और इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पैंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौको है, देर न करो, अभी अप्लाई करो। जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Sakti Shahadat Ji Midoi Mala. ज़रो नाहे यज़ीद के यो इश्क जो आज़ा हुसन जो करार असल इमामन सी।

कोई नाज सख्ती शहादत जी निसो रोई नाज रिंद परूड़ी नाज कजिए करबला।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफां एक अहम और शानदार करियर मौको पेश कयो वने थो। जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्तों तलब कई वन थियो। जीए एफएम एक अड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जो मीडिया मैनेजमेंट, टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे और इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौको है। देर न करियो, अभी ही अप्लाई करियो। जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।

0: रण सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के ये इश्क जो आजार वसण जो करार असल इमामन सी
1: गुनाह का बोझ

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान के जरो नाहे यजीद के इश्क जो आजार हुसन जो करार असल इमामन सी।

0: शरीफ हैं अमरीकी नायब सदर जी गाल बोल भी थी आए कुछ देर बाद इन अहम मफामती याददाश्त नामे ते सयूं कयो वेंदियूं।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौके पेश कर वने थो। जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवार का दरख्वास्तों तलब कई वन थी। जीए एफएम एक अड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जो मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलें। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौके है, देर न करो, अभी अप्लाई करो। जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।
3: सख्ती शहादत जी निसोरो ही नाज। सख्ती शहादत जी निसोरो ही नाज। रिंद परूरी नराज कजिए करबला।

0: खूबसूरत ये जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन दीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम ए शानदार करियर मौको पेश कर वने थो जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार ए जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्त तलब कई वने थियो जीए एफएम एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप ए ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतूं रखे ए इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन व्हाट्सएप नंबर 03111770451 ही एक बेहतरीन करियर मौको आहे देर न करियो अभी अप्लाई करियो जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज
2: सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान के जरो नाहे यजीद के ये इश्क जो आजा उसण जो करार असल इमामन सी

पाकिस्तान जी सफारती कोशिशन रंग लातो अमेरिका ईरान बीहर गालन जे मेज ते अची वया। नायब अमरीकी सदर जी स्विट्जरलैंड के शहर बर्गन स्टॉक में वजीर आजम शाहबाज शरीफ से गड मीडिया से गाल बोल कंदे चयो तो ईरान से गालन में बेहतरीन अकबराई थी आए मामलन ते हाकारी गाल बोल जी जरूरत आए तामीरी गालन जा हाकारी नतीजा हासिल थींदा। जेडी वेंट्स चयो त अज अमन जो डी आए सदर ट्रंप लबनान में छिकताण जी खात्मे लाए कोशिशों करे रहयो आए जंगबंदी के अड़न मुआदन में सदाई का गड़बड़ थी है वजीर आजम शहबाज शरीफ ए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो किरदार वाखाण जोगो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन सपह सालार है वजीर आजम शहबाज शरीफ जो चवण हो तो यह आलमी अमुन लाए अहम मौको है सदर डोनाल्ड ट्रंप की मोतबर क्यादत सबब गालू मुमकिन थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गाल अहम किरदार अदा किया।

शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो 73वां जन्म दिहाड़ो अज मल्हायो पियो वञे। मुख़्तलिफ़ शहरनि में सालगिरह जा केक काटिया विया। सिंध असेंबली शहीद बेनज़ीर भुट्टो खे जन्म दिहाड़े जे मौके ते भेटा पेश करण वारो ठहराउ इतफ़ाक़ राय सां मंज़ूर करे वरितो। कड़ी ख़ुदा बख़्श भुट्टो में शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी मज़ार ते क़ुरान पानी भी कई वई। कंबर, कंदकोट ऐं ॿियनि शहरनि में बि केक काटे शहीद बेनज़ीर भुट्टो खे भेटा पेश कई वई।

शहीद बेनज़ीर भुट्टो औरतुनि लाइ सियासी शमूलियत खे नवां दग ॾिना, जुरत ॾिनी ऐं क़यादत जा नवां दरवाज़ा खोलिया। संदसि नज़रियो अॼु पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल लाइ रहनुमाई आहे। क़ौम खेसि जमहूरियत, ख़िदमत ऐं उमेद जी अलामत तौरु यादि करे थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हिकु जमहूरी, तरक़ी पसंद ऐं चइनि सूबनि जी ज़ंजीर हुई। मज़बूत वफ़ाक़, बाख़्तियार मुल्क ऐं आइन जी बालादस्ती शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो नज़रियो हो। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन चयो आहे त अमरीका ईरान मुआहिदे में फील्ड मार्शल जो किरदारु बहितरीन रहियो। दुनिया में पाकिस्तान खे अमुन पसंद मुल्क तौरु सुञातो वञे थो। पाकिस्तान समूरी दुनिया में अमुन आणे रहियो आहे। विचोभर में अमुन लाइ पाकिस्तान अहम किरदारु अदा कयो। सिंध असेंबलीअ में ॻाल्हाईंदे शर्जील मेमन जो चवणु हो त शहीद राणे जी सोच ऐं विज़न अॼु बि नौजवाननि लाइ मशल राह आहे। बेनज़ीर भुट्टो सॼी ज़िंदगी अवाम जो आवाज़ बणिजी गुज़ारी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो पहिरीं औरत वज़ीर आज़म बणिजी सियासी क़यादत जी तारीख़ लिखी। बेनज़ीर भुट्टो मुल्क खे मिज़ाइल टेक्नोलॉजी ऐं लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम ॾिनो।

सेठालजा मां चार महीनन का मुबैना तौर अगवा जानायल निंगरी बाजियाब न थी आसफा मुगल जी बाजियाबी लाए वारसन पारा प्यादल मार्च सेठालजा मां निकतल नारी जा वारिस एसएसपी खैरपुर ताई प्यादल मार्च एसएसपी खैरपुर जी ऑफिस ताई प्यादल मार्च कंदा वारसन जो चवण आहे त पुलिस रुगो आसरा ॾेई रही आहे निंगरी बाजियाब कराए परेशानी खत्म कई वञे।

0: ऐं पंहिंजी थकावट लिकाए औलाद जी मुस्कुराहट में सुकून ऐं ज़िंदगी ॻोल्हण वारी अज़ीम हस्ती पीउ खे लखे सलाम। पीअरनि जो आलमलायो पियो वञे, पीउ जी मोहबत रहनुमाई ऐं बेलोस क़ुर्बानीनि खे सलाम, जेको औलाद खे सुखो सताबो रखण लाइ दुनिया जूं सख़्तियूं ऐं तकलीफ़ूं बर्दाश्त करे थो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौको पेश कर वने थो। जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्तों तलब कई वने थियो। जीए एफएम एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में आहे, जेको मीडिया मैनेजमेंट, टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतूं रखे और इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौको आहे, देर न करियो, अभी अप्लाई करियो। जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।
3: सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान के जरो नाहे यजीद के ये इश्क जो आजा। वसण जो करार असल इमामन सी।

रण सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के ये इश्क जो आजा वसण जो करार असल इमामन सी।

0: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौके पेश कर वने थो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवार का दरख्वास्त तलब कई वन थी GAFM एक अड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जो मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे और इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन व्हाट्सएप नंबर 03111770451 ही एक बेहतरीन करियर मौके है देर न करियो अभी अप्लाई करियो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज
1: सख्ती शहादत जी निसोरोई नाज सख्ती शहादत जी निसोरोई नाज रिंद परूरी निराज

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के इश्क जो आजा हुसन जो करार असल इमामन सी।

0: यजीद के ये इश्क जो आजार हुसन जो करार असल इमामन सी।
1: उठी तरस सदाई वगुनी गरजो उठी तरस सदाई वगुनी गरजो पांजे नढड़े अदे अली असगर जो उठी तरस सदाई उठी तरस सदाई वगुनी गरजो पांजे नढड़े अदे अली असगर जो उठी तरस सदाई तुझे उठड़े अदान करे खैर धनी ये दुआ थी घुरा पाजा हड़ा धनी तुझे उठड़े अदान करे खैर धनी ये दुआ थी घुरा।

0: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरतेहाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंडअप में। सिंध राउंडअप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
1: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तां बुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंडअप संगदे माया गुलाब खान बेण।

सिंध राउंड अप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा। सेवण जो शहबाज़ एयरपोर्ट 30 सालनि खां गैर फ़ाल बणियल, बूबक भरिसां क़ाइमु शहबाज़ एयरपोर्ट अख़्तियारनि खां विसरी वियो। हुकूमती मेंबर्स पारां सिंध बजट जी साराह, पाणी बिजली ऐं रोड वॾा मसला करार, अपोज़िशन जी तनक़ीद। गंबट में HIV ते कंट्रोल न थी सघियो, वधीक हिकु बार फोत, अंग वधी 8 थी वियो। मेडिकल दाख़िलाउनि जे लाइ MDKit टेस्ट 16 अगस्त ते वठण जो ऐलान। महांगाई जो तूफ़ान, पटाटनि, टमाटर

सैकड़ो सस्ता थिया। थूम 2.51 ऐं केला 1.28 सैकड़ो सस्ता थिया। उन खां सवाइ डीज़ल 1.6 ऐं पेट्रोल जी क़ीमत में 2.52 सैकड़ो घटाई थी, जॾहिं त दालुनि ऐं अटे जी क़ीमतुनि में बि लाथ आई आहे। वफ़ाक ऐं सिंध हुकूमत में 8 पुलिस आफ़िसरनि जे मुक़ररी सां तकरार शुरू थी वियो आहे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जे सिंध में मुक़ररु 8 पुलिस आफ़िसरनि जूं ख़िदमतूं वफ़ाक हवाले करण जो फ़ैसिलो कयो। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न 8 आफ़िसरनि जूं ख़िदमतूं वफ़ाक हवाले करण ऐं सिंध में नवां आफ़िसर मोकिलण जो फ़ैसिलो करे वरितो। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न सिंध हुकूमत खे आगाही ॾेई छॾी। सिंध हुकूमत पुलिस आफ़िसरनि वफ़ाकी हवाले करण खां जवाबु ॾेई छॾियो। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न पुलिस ग्रुप जे 8 आफ़िसरनि ख़िलाफ़ सख़्तु डिपार्टमेंटल कार्रवाई जा हुकुम जारी करे छॾिया। उन्हनि आफ़िसरनि में मोहम्मद फारूक अहमद, 19 ग्रेड जो ज़िशान सिद्दीकी, शबीर सेठार, शमील रियाज ऐं ॿिया शामिल, काशिफ आफ़ताब अहमद, कैप्टन रिटायर्ड सदाम हुसैन, हफीज़ुर रहमान ऐं कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली शामिल आहिनि।

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु हुकूमत माली साल 2026-2027 के लिए 3,562 अरब रुपयन का वधिक जी बजट पेश कर छी है, जैमें तालीम, सेहत, बल्दियाती खिदमतुन समाजी तहफुज़ के शोबन के खास तरजीह दिनी वही है। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह पारा सूबाई असेंबली में पेश कल बजट में सरकारी मुलाजमन रिटायर्ड मुलाजमन लाए पघार पेंशन में 7% वाद जो पिण ऐलान किया वो। बजट दस्तावेज मूजिब सूबे की आमदनी जो सब का वो जरियो वफा का मिलंद रकमू रहंद जिनो खातो 2,263 अरब रुपये का लगाया वो है, जो मजमू आमदनी जो तकरीबन 2.3% बनजे तो। उनखा सवा सूबाई टैक्स आमदनी 690 अरब रुपया, गैर टैक्स आमदनी 85 अरब रुपया, सरमाएदारी ओगाड़ियों 68 अरब 34 करोड़ रुपया, वफाकी ग्रांट्स 64 अरब 33 करोड़ रुपया रखा वह। खर्चन के हवाले से बजट जो वो हिस्सों पघारों पेंशनों से खर्च किया वो। दस्तावेजन मुताबिक मजमू बजट जो 50% हिस्सों पघारों पेंशनों लाए मुख्तस किया वो है, जदें त 38% ग्रांट्स सब्सिडीज, 8% ऑपरेशन मेंटेनेंस बाकी हिस्सों कर्ज की अदायगी मरम्मत लाए रखो वो है। तरक्याती मनसूबन बाबत हुकूमत ईंदड़ माली साल लाए 720.38 अरब रुपये जो तरक्याती बजट तजवीज़ किया है, जो गुजरियल साल के 1,018 अरब रुपये के भेट में 29% घट है, जदें त परदेही सहकार से हलंदड़ मनसूबन लाए 256.05 अरब रुपया मुख्तस कया वह। तालीम के बजट में सब का अहमियत दिनी वही है, जै ला 620 अरब रुपया मुख्तस कया वह। स्कूलन के मखसूस बजट में इजाफो कर उनके 22.64 अरब रुपये तक पहुँचाया वो है, जदें त यूनिवर्सिटी की ग्रांट्स में भी 10% वाद कई वही है। सेहत के शुबे के लिए 393.16 अरब रुपया रखा वह, जिन में 148.17 अरब रुपया वन अस्पतालों सेहत के मरकजन के ग्रांट्स तौर फराहम कया वा। बल्दियाती खिदमतों के लिए 306 अरब रुपया, अमन अमान के लिए 222.30 अरब रुपया, रात खुराक लाए 61.90 अरब रुपया, समाजी खिदमतों के लिए 57.90 अरब रुपये का मुख्तस कया वह। गरीब कमजोर तबके की मदद के लिए हुकूमत नौ फलाही मनसूबन जो पिण ऐलान किया है, बेनजीर हारी कार्ड, किचन गार्डिंग किट्स, बेनजीर हाउसिंग सेल, पीपल्स आईटी प्रोग्राम नंढन कारोबार के मदद के लिए 80 रुपया रखा वह। स्पेशल मानून के लिए मददगार औजारन, लेंस सपोर्ट गोगल ग्लासेस की फराहमी के लिए पिण 1.1 अरब रुपया मुख्तस कया वह। बे पासे बजट इजलास दौरान अपोजिशन जमायत सख्त एहतजाज किया, एमक्यू पाकिस्तान बजट तकरीर जो बाइकाट किया, जदें त अपोजिशन अगवान अली खुर्शीदी बजट से एतराज़ कदे चो त अपोजिशन के एतमाद में न वरतो वो है, जमहूरियत की रवायत की पासदारी न थियण सबब एहतजाज जारी रहंदा। इन बजट में तालीम, सेहत समाजी तहफुज़ के तरजीह दियण से अवामी भलाई से ध्यान दिनो वो है, पर तरक्याती बजट में घटताई मुस्तकबिल के तरक्याती मनसूबन से असर विझी सके थी। हुकूमत लाए वो चैलेंज हों त मुख्त कल फंडन के शफाफ नमूने इस्तेमाल कदे अवाम तई हकीकी

किदुनि वारो सिलसिलो काल्ह बि जारी रहियो। हुकूमती मेंबरनि सिंध जे वॾे वज़ीर खे मुश्किल मुआशी सूरत हाल में मुतवाज़िन बजट पेश करण ते मुबारकबाद ॾिनी, जॾहिं त मुख़ालिफ़ धुर जे मेंबरनि चयो त बजट जी तयारी दौरान उन्हनि खे एतमाद बि न वरितो वियो ऐं उहे उन खे रद्द कनि था। पीपी मेंबर मारवी राष्ट्रीय चयो त मुख़ालिफ़ धुर वॾे वज़ीर जे तकरीर खे ॿुधण खां सवाइ बाइकाट करे पंहिंजे माण्हुनि सां ज़्यादती कई आहे। सिंध हुकूमत सूबे जे तरक़ीअ जे लाइ बहितरीन ख़िदमतूं सर अंजाम ॾिनियूं आहिनि। सिंध में अमन अमान जी सूरत हाल बहितरीन आहे, पर जेको बि मनशा जो वापार में मुलविस आहे उनखे सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। एमक्यूएम जे अब्दुल बासत चयो त सिंध में करप्शन उरूज ते आहे, पोइ एंटी करप्शन इदारो करप्शन खे कीअं रोके सघंदो। एंटी करप्शन जी पंहिंजी इमारत में करप्शन थी। एमक्यूएम जे डायरेक्टर फौजिया हमीद चयो त कराचीअ में सभु कुझु ठीकु न आहे, माण्हू पाणीअ जे लाइ भॼी रहिया आहिनि। शहर में पाणी, बिजली या गैस न आहे, माण्हू मातम करण बदिरां पाणी जे टैंकरनि पुठियां भॼी रहिया आहिनि। बजट में को बि अवामी भलाई जो प्रोग्राम न आहे। एमक्यूएम मेंबर एजाज़ उल हक़ चयो त हीउ हिकु गैर जमहूरी बजट आहे जंहिंखे असां रद्द करियूं था। भूबक भरिसां क़ाइमु शहबाज़ एयरपोर्ट अख़्तियारनि खां विसरी वियो, 30 सालनि खां गैर फ़ाल बणियल रहियो। 1993 में पीपी दौर में उन वक़्त जे वज़ीर आला सैयद अब्दुल्ला शाह जे कोशिशुनि सां भूबक वटि एयरपोर्ट ठाहियो वियो हो। एयरपोर्ट मुख़्तसर वक़्तु ऑपरेशन रहण खां पोइ लागीतो बंदि आहे। गैर फ़ाल खे 3 ॾहाका गुज़री विया, पर हिन वक़्त ताईं एयरपोर्ट बंदि पियल आहे। सार संभाल न लहण सबबि एयरपोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुकमल तौरु तबाह थी वियो आहे। कैमरा, लाउंज हॉल, वेटिंग एरिया, ऑफिसुनि जूं इमारतूं ज़बून हाल थी वियूं आहिनि। 2010 ऐं 2022 जे ॿोॾियुनि में एयरपोर्ट ॿुॾल रहियो, जंहिं करे काफ़ी सामान लुढ़ी वियो। एयरपोर्ट ते लाइटिंग लाइ लॻल लखें रुपियनि जा सोलर प्लेटूं पिणु चोर लाहे विया, जंहिं करे एयरपोर्ट ते मुकमल ऊंदाही छायल आहे। गंबट ऐं आसपास जे इलाइक़नि में HIV ते कंट्रोल न थी सघियो। गंबट जे कचे जे ॻोठ खानण नारे जो वासी मोहम्मद ताहिर फोतुनि जो अंग वधी 8 थी वियो। नींगर जे घर में कोराम, घर भातियुनि खे बेहोश दौरा पइजी विया। उन सिलसिले में फोती नींगर जे वारसनि ॿुधायो त नींगर मोहम्मद ताहिर खे बुखार थियो हो, जंहिंखे इलाज जे लाइ गिम्स अस्पताल में दाखिल करायो वियो हो, जिथे नींगर जी HIV पॉज़िटिव आई हुई, जंहिं बाद वधीक इलाज जे लाइ लाड़काणे अस्पताल रेफर कयो वियो हो। जंहिंजे लाड़काणे अस्पताल में इलाज हलंदड़ तो हू फोत थी वियो आहे। हुन वक़्त ताईं HIV में मुबतला गंबट में फोतुनि जो अंग वधी 8 थी वियो आहे ऐं 4 बारड़ा सिटी अस्पताल जे HIV वार्ड में दाख़िल आहिनि, जिन जो इलाज पिणु हलंदड़ आहे। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC MD KET 2026 जो शेड्यूल जारी करे छॾियो। PMDC मूजिब MBBS ऐं BDS प्रोग्रामनि में दाख़िला लाइ MD KET जो शेड्यूल जारी कयो वियो आहे। MD KET 2026 जी दाख़िला टेस्ट हलंदड़ साल 16 अगस्त ते थींदी। MD KET आचर 16 अगस्त ते सुबुह 10 वॻे सॼे मुल्क में हिकु ई वक़्तु वरितो वेंदो। पंजाब में टेस्ट कराइण जी ज़िमेवारी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर, सिंध में सखर IBA यूनिवर्सिटी, ख़ैबर पख्तूनख्वा में ख़ैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐं बलोचिस्तान में भूलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस कोइटिया खे ॾिनी वई आहे। रियाज में मौजूदु उमेदवारनि जे लाइ बि टेस्ट जी ज़िमेवारी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद खे सौंपी वई आहे। उमेदवारनि जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 जून 2026 खां शुरू थींदी। आम फीस सां रजिस्ट्रेशन जी आख़िरी तारीख़ 8 जुलाई 2026 मुक़ररु कई वई आहे। देरि सां रजिस्ट्रेशन 13 जुलाई 2026 ताईं कराए सघिबी। पाकिस्तान अंदर क़ाइम टेस्ट सेंटर लाइ रजिस्ट्रेशन फीस 9,000 रुपया मुक़ररु कई वई आहे। लेट रजिस्ट्रेशन फीस 13,000 रुपया हूंदी। बिन अलाक़वामी टेस्ट सेंटरनि जे लाइ रजिस्ट्रेशन फीस 45,000 रुपया मुक़ररु कई वई आहे, जॾहिं त देरि सां रजिस्ट्रेशन जी फीस 55,000 रुपया हूंदी। सिंध में हफ़्तेवार महांगाई 0.76% वधी वई, जंहिंखां पोइ महांगाई जी मजमूई सालियानी शरह 15.28% थी वई आहे। शुमारियात खाते तरफ़ां महांगाई बाबति जारी कयल हफ़्तेवार रिपोर्ट मूजिबि हिकु हफ़्ते दौरान 25 ज़रूरी शयुनि जी क़ीमतुनि में वाध रिकॉर्ड कई वई। रिपोर्ट मूजिबि हफ़्ते दौरान 11 शयूं सस्तियूं थियूं ऐं 15 जा अघ बरक़रार रहिया, जॾहिं त हिकु हफ़्ते अंदरि टमाटा 16.65% महांगा थिया, पटाटा 6.82% महांगा,
महांगा थिया। कुकड़ 5.6%, वॉशिंग सोप जी कीमत में 1.16% वाध थी। खीर, दही, बाकरे गोश्त आनंद समेत बियन शयन जी कीमतुन में भी वाध रिकॉर्ड कई वही, जडे त LPG जी कीमत 0.51% वधी। रिपोर्ट में जणायो वियो आहे त हिक हफ़्ते में बसर 2.98% सस्ता थिया, थूम 2.51 ऐं केला 1.28% सस्ता थिया।

हुन खां सवाइ डीज़ल 1.6 ऐं पेट्रोल जी क़ीमत में 0.52 सैकड़ो घटाई थी, जॾहिं त दालुनि ऐं अटे जी क़ीमतुनि में बि लाथ आई आहे। वफ़ाक ऐं सिंध हुकूमत में 8 पुलिस आफ़िसरनि जे मुक़ररी सां तकरार शुरू थी वियो आहे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जे सिंध में मुक़ररु 8 पुलिस आफ़िसरनि जूं ख़िदमतूं वफ़ाक हवाले करण जो फ़ैसिलो कयो। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न 8 आफ़िसरनि जूं ख़िदमतूं वफ़ाक हवाले करण ऐं सिंध में नवां आफ़िसर मोकिलण जो फ़ैसिलो करे वरितो। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न सिंध हुकूमत खे आगाही ॾेई छॾी। सिंध हुकूमत पुलिस आफ़िसरनि वफ़ाकी हवाले करण खां जवाबु ॾेई छॾियो। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न पुलिस ग्रुप जे 8 आफ़िसरनि ख़िलाफ़ सख़्तु डिपार्टमेंटल कार्रवाई जा हुकुम जारी करे छॾिया। उन्हनि आफ़िसरनि में मोहम्मद फारूक अहमद, 19 ग्रेड जो ज़िशान सिद्दीकी, शबीर सेठार, शमील रियाज़ ऐं ॿिया शामिल, काशिफ आफ़ताब अहमद, कैप्टन रिटायर्ड सदाम हुसैन, हफीज़ुर रहमान ऐं कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली शामिल आहिनि।

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु हुकूमत माली साल 2026-2027 के लिए 3562 अरब रुपयन का वधिक जी बजट पेश कर छड़ी है, जैमें तालीम, सेहत, बल्दियाती खिदमतुन और समाजी तहफुज के शोबन के खास तरजीह दिनी वही है। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह पारा सूबाई असेंबली में पेश कल बजट में सरकारी मुलाजमन और रिटायर्ड मुलाजमन लाए पघार पेंशन में 7-7% वाध जो पिण ऐलान किया वो। बजट दस्तावेज मूजिब सूबे की आमदनी जो सब का वो जरियो वफा का मिलंद रकमू रहंद जिनो काथो 2263 अरब रुपयन का लगाया वो है, जो मजमू आमदनी जो तकरीबन 2.5% बनजे तो। उनका सूबाई टैक्स आमदनी 690 अरब रुपया, गैर टैक्स आमदनी 85 अरब रुपया, सरमाएदारी ओगाड़ियों 68.34 अरब रुपया और वफाकी ग्रांट्स 64.33 अरब रुपया रखा वह। खर्चन के हवाले से बजट जो वो हिस्सो पघारों पेंशन से खर्च किया वो। दस्तावेजन मुताबिक मजमू बजट जो 50% हिस्सों पघारों पेंशन लाए मुख्त वो है, जदें त 38% ग्रांट्स सब्सिडीज, 8% ऑपरेशन मेंटेनेंस बाकी हिस्सों कर्जन की अदायगी मरम्मत लाए रखो वो है। तरक्याती मनसूबन बाबत हुकूमत ईंदड़ माली साल लाए 720.38 अरब रुपये जो तरक्याती बजट तजवीज़ किया है, जो गुजरियल साल के 1018 अरब रुपये के भेट में 29% घट है, जदें त परदेही सहकार से हलंदड़ मनसूबन लाए 256.05 अरब रुपया मुख्त कया वह। तालीम के बजट में सब का अहमियत दिनी वही है, जै लाए 620 अरब रुपया मुख्त कया वह। स्कूलन के मखसूस बजट में इजाफो कर उनके 22.64 अरब रुपयन तक पहुँचाया वो है, जदें त यूनिवर्सिटी की ग्रांट्स में भी 10% वाध कई वही है। सेहत के शोबे के लिए 393.16 अरब रुपया रखा वह, जिन में 148.17 अरब रुपया वन अस्पतालों सेहत के मरकजन के ग्रांट्स तौर फराहम कया वा। बल्दियाती खिदमतुन के लिए 306 अरब रुपया, अमन अमान के लिए 222.30 अरब रुपया, रात खुराक लाए 61.90 अरब रुपया, समाजी खिदमतुन के लिए 57.90 अरब रुपयन का मुख्त कया वह। गरीब और कमजोर तबके की मदद के लिए हुकूमत नौ फलाही मनसूबन जो पिण ऐलान किया है, बेनजीर हारी कार्ड, किचन गार्डिंग किट्स, बेनजीर हाउसिंग सेल, पीपल्स आईटी प्रोग्राम नंढन कारोबार के मदद के लिए 80 रुपया रखा वह। स्पेशल मानून के लिए मददगार औजार, लेंस सपोर्ट गोगल ग्लासेस की फराहमी के लिए पिण 1.1 अरब रुपया मुख्त कया वह। बे पास बजट इजलास दौरान अपोजिशन जमायत सख्त एहतजाज किया, एमक्यू पाकिस्तान बजट तकरीर जो बाइकाट किया, जदें अपोजिशन अगवान अली खुर्शीदी बजट से एतराज कदे अपोजिशन के एतमाद में न वरतो वो है, जमहूरियत की रवायत की पासदारी न थियण सबब एहतजाज जारी रहा। इन बजट में तालीम, सेहत समाजी तहफुज के तरजीह दियण से अवामी भलाई से ध्यान दिनों वो है, पर तरक्याती बजट में घटताई मुस्तकबिल के तरक्याती मनसूबन से असर विझी सके थी। हुकूमत लाए वो चैलेंज होंद मुख्त कल फंडन के शफाफ नमूने इस्तेमाल कदे अवाम तई हकी

रण सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद खे ये इश्क जो आजार वसण जो करार असल इमामन सी।

रण सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के ये इश्क जो आजा वसण जो करार असल इमामन सी।

0: ज्ञान मोला मुखे मेरी
1: अज शेर हली।
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तां ॿुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंड अप सां गॾु, मां आहियां गुलाब खान भेण।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुझी सकंदा सेवण जो शहबाज एयरपोर्ट 30 सालन खां गैरफाल बनियल बूबक भरसां कायम शहबाज एयरपोर्ट अख्तियारिन खां विसरी वयो हुकूमती मेंबर्स पारां सिंध बजट जी सारा पानी बिजली ऐं रोड वॾा मसला करार अपोजिशन जी तनक़ीद गंबट में HIV ते कंट्रोल न थी सघियो वधीक हिक बार फोत अंग वधी 8 थी वियो मेडिकल दाखिलाउनि जे लाइ MDKIT टेस्ट 16 अगस्त ते वठण जो ऐलान महंगाई जो तूफान पटाटन टमाटन मुर्गी खीर दही सुधो 25 ज़रूरी शयुनि जा अघ वधी विया स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा सिंध बजट साल 2026-27 तालीम ऐं सिहत खे तरजीह तरक़ियाती बजट में घटिताई

सिंध जे नए माली साल वारे बजट ते सिंध असेंबली में बहस काल बे दिन भी जारी रहो। हुकूमती ए मुखालिफ धुर मेंबरन पारा एक बे ते इल्जामन ए तनकीदन वारो सिलसिलो काल भी जारी रहो। हुकूमती मेंबरन सिंध जे वडे वजीर के मुश्किल मुआशी सूरत हाल में मुतवाजन बजट पेश करण ते मुबारकबाद दिनी, जडे तो मुखालिफ धुर जे मेंबरन चयो तो बजट की तैयारी दौरान उन्हें एतमाद भी न वरतो वो उनके रद्द कन था। पीपी मेंबर मारवी राष्ट्रीय चयो तो मुखालिफ धुर वडे वजीर के तकरीर के बुधण का सवाई बायकाट करे पांचे मानुन सां जाती कई है। सिंध हुकूमत सूबे की तरक्की के लिए बेहतरीन खिदमतों सर अंजाम दिन्यून। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बेहतरीन है, पर जो भी मंशियात जो व्यापार में मुलविस है उनके सख्त सजा दिनी वे। एम क्यू एम जे अब्दुल बासत चयो तो सिंध में करप्शन उरूज से है, एंटी करप्शन इदारो करप्शन के कें रोके सकंदो। एंटी करप्शन की पांजी इमारत में करप्शन थी। एम क्यू एम जे डॉक्टर फौजिया हमीद चयो तो कराची में सब कुछ ठीक ना है, मानू पानी के लिए भजी रहा है। शहर में पानी बिजली या गैस ना है, मानू मातम करने बदरा पानी के टैंकर पुठियां भजी रहा है। बजट में को भी अवामी भलाई जो प्रोग्राम ना है। एम क्यू एम मेंबर एजाज उल हक चयो तो ही

कैमरा लाउंज हॉल वेटिंग एरिया ऑफिसन जो इमारतूं ज़बून हाल थी वयूं आहिनि। 2010 ऐं 2022 जे बोडुनि में एयरपोर्ट बुडल रहियो जंहिं करे काफ़ी सामान लुढ़ी वियो। एयरपोर्ट ते लाइटिंग लाइ लॻल लखे रुपियनि जा सोलर प्लेटूं पिणु चोर लाहे विया जंहिं करे एयरपोर्ट ते मुकमल ऊंदाही छायल आहे। गंबट ऐं आसपास जे इलाइक़नि में HIV ते कंट्रोल न थी सघियो। गंबट जे कचे जे ॻोठ खानण नारे जो वासी मोहम्मद ताहिर फोतुनि जो अंग वधी अठ थी वियो। नींगर जे घर में कोराम गर्भातियुनि खे बेहोश दौरा पइजी विया। उन सिलसिले में फोती नींगर जे वारसनि ॿुधायो त नींगर मोहम्मद ताहिर खे बुखार थियो हो जंहिंखे इलाज जे लाइ गिम्स अस्पताल में दाख़िल करायो वियो हो, जिथे नींगर जी HIV पॉज़िटिव आई हुई। जंहिं बाद वधीक इलाज जे लाइ लाड़काणे अस्पताल रेफर कयो वियो हो, जंहिंजे लाड़काणे अस्पताल में इलाज हलंदड़ तो हू फोत थी वियो आहे। उन वक्त ताईं HIV में मुबतला गंबट में फोतुनि जो अंग वधी अठ थी वियो आहे ऐं चार बारड़ा सिटी अस्पताल जे HIV वार्ड में दाख़िल आहिनि जिन जो इलाज पिणु हलंदड़ आहे। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC MD KET 2026 जो शेड्यूल जारी करे छॾियो। PMDC मूजिब MBBS ऐं BDS प्रोग्रामनि में दाख़िला लाइ MD KET जो शेड्यूल जारी कयो वियो आहे। MD KET 2026 जी दाख़िला टेस्ट हलंदड़ साल 16 आगस्त ते थींदी। MD KET आचर 16 आगस्त ते सुबुह 10 वॻे सॼे मुल्क में हिकु ई वक़्तु वरितो वेंदो। पंजाब में टेस्ट कराइण जी ज़िमेवारी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर, सिंध में सखर IBA यूनिवर्सिटी, ख़ैबर पख्तूनख्वा में ख़ैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐं बलोचिस्तान में भूलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस कोइटिया खे ॾिनी वई आहे। रियाज़ में मौजूदु उमेदवारनि जे लाइ बि टेस्ट जी ज़िमेवारी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुटो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद खे सौंपी वई आहे। उमेदवारनि जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 जून 2026 खां शुरू थींदी। आम फीस सां रजिस्ट्रेशन जी आख़िरी तारीख़ 8 जुलाई 2026 मुक़ररु कई वई आहे। देरि सां रजिस्ट्रेशन 13 जुलाई 2026 ताईं कराए सघिबी। पाकिस्तान अंदर क़ाइम टेस्ट सेंटर लाइ रजिस्ट्रेशन फीस 9,000 रुपया मुक़ररु कई वई आहे। लेट रजिस्ट्रेशन फीस 13,000 रुपया हूंदी। बैन अल-अक़वामी टेस्ट सेंटरनि जे लाइ रजिस्ट्रेशन फीस 45,000 रुपया मुक़ररु कई वई आहे, जॾहिं त देरि सां रजिस्ट्रेशन जी फीस 55,000 रुपया हूंदी। सिंध में हफ़्तेवार महांगाई 0.76% वधी वई, जंहिंखां पोइ महांगाई जी मजमूई सालियानी शरह 15.28% थी वई आहे। शुमारियात खाते तर्फ़ां महांगाई बाबति जारी कयल हफ़्तेवार रिपोर्ट मूजिबि हिकु हफ़्ते दौरान 25 ज़रूरी शयुनि जी क़ीमतुनि में वाधि रिकॉर्ड कई वई। रिपोर्ट मूजिबि हफ़्ते दौरान 11 शयूं सस्तियूं थियूं ऐं 15 जा अघ बरक़रार रहिया, जॾहिं त हिकु हफ़्ते अंदरि टमाटा 16.65% महांगा थिया, पटाटा 6.82% महांगा थिया, कुकड़ 5.60%, वॉशिंग सोप जी क़ीमत में 1.16% वाधि थी, खीर ॾही बाकरे गोश्त ऐं आनंद समेत ॿियनि शयुनि जी क़ीमतुनि में बि वाधि रिकॉर्ड कई वई, जॾहिं त LPG जी क़ीमत 0.51% वधी। रिपोर्ट में ॼाणायो वियो आहे त हिकु हफ़्ते में बसर 2.98% सस्ता थिया, थूम 2.51 ऐं केला 1.28% सस्ता थिया। उन खां सवाइ डीज़ल 1.6 ऐं पेट्रोल जी क़ीमत में 0.52% घटाई थी, जॾहिं त दालुनि ऐं अटे जी क़ीमतुनि में बि लाथ आई आहे। वफ़ाक ऐं सिंध हुकूमत में 8 पुलिस आफ़िसरनि जे मुक़ररी तां तकरार शुरू थी वियो आहे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जे सिंध में मुक़ररु 8 पुलिस आफ़िसरनि जूं ख़िदमतूं वफ़ाक हवाले करण जो फ़ैसिलो कयो। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न 8 आफ़िसरनि जूं ख़िदमतूं वफ़ाक हवाले करण ऐं सिंध में नवां आफ़िसर मोकिलण जो फ़ैसिलो करे वरितो। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न सिंध हुकूमत खे आगाही ॾेई छॾी। सिंध हुकूमत पुलिस आफ़िसरनि वफ़ाकी हवाले करण खां जवाब ॾेई छॾियो। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न पुलिस ग्रुप जे 8 आफ़िसरनि ख़िलाफ़ सख़्तु डिपार्टमेंटल कार्रवाई जा हुकुम जारी करे छॾिया। उन्हनि आफ़िसरनि में मोहम्मद फारूक अहमद, 19 ग्रेड जो ज़िशान सिद्दीकी, शबीर सेठार, शमील रियाज ऐं ॿिया शामिल, काशिफ आफ़ताब अहमद, कैप्टन रिटायर्ड सदाम हुसैन, हफीज़ुर रहमान ऐं कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली शामिल आहिनि।

पेशा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु हुकूमत माली साल 2026-2027 के लिए 3,562 अरब रुपयन का वधिक जी बजट पेश कर छड़ी है, जैमें तालीम, सेहत, बल्दियाती खिदमतुन समाजी तहफुज के शोबन के खास तरजीह दिनी वही है। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह पारा सूबाई असेंबली में पेश कल बजट में सरकारी मुलाजम

ऐं रिटायर्ड मुलाज़िमनि लाइ पघार ऐं पेंशन में 7-7 सैकड़ो वाध जो पिणु ऐलान कयो वियो। बजट दस्तावेज़ मूजिबि सूबे जी आमदनी जो सभ खां वॾो ज़रियो वफ़ाक़ खां मिलंदड़ रक़मूं रहंदियूं, जिन जो काथो 2,263 अरब रुपियनि खां वधीक लॻायो वियो आहे, जेको मजमूई आमदनीअ जो तक़रीबन 2/3 हिसो बणिजे थो। उन खां सवाइ सूबाई टैक्स आमदनी 690 अरब रुपया, गैर टैक्स आमदनी 85 अरब रुपया, सरमाएदारी ओगाड़ियूं 88 अरब 34 करोड़ रुपया ऐं वफ़ाक़ी ग्रांट्स 64 अरब 33 करोड़ रुपया रखिया विया आहिनि। ख़र्चनि जे हवाले सां बजट जो वॾो हिसो पघारुनि ऐं पेंशनुनि ते ख़र्च कयो वेंदो। दस्तावेज़नि मुताबिक़ मजमूई बजट जो 50% हिसो पघारुनि ऐं पेंशनुनि लाइ मुख़्तस कयो वियो आहे, जॾहिं त 38% ग्रांट्स ऐं सब्सिडीज़, 8% ऑपरेशन ऐं मेंटेनेंस ऐं बाक़ी हिसो कर्ज़नि जी अदायगी ऐं मरम्मत लाइ रखियो वियो आहे। तरक़ियाती मनसूबनि बाबति हुकूमत ईंदड़ माली साल लाइ 720 अरब 38 करोड़ रुपियनि जो तरक़ियाती बजट तजवीज़ कयो आहे, जेको गुज़िरियल साल जे 1,018 अरब रुपियनि जे भेट में 29% घटि आहे, जॾहिं त परॾेही सहकार सां हलंदड़ मनसूबनि लाइ 256 अरब 5 करोड़ रुपया मुख़्तस कया विया आहिनि। तालीम खे बजट में सभ खां वधीक अहमियत ॾिनी वई आहे, जंहिं लाइ 620 अरब रुपया मुख़्तस कया विया आहिनि। स्कूलनि जे मखसूस बजट में इज़ाफ़ो करे उनखे 22 अरब 64 करोड़ रुपियनि ताईं पहुचायो वियो आहे, जॾहिं त यूनिवर्सिटियुनि जी ग्रांट्स में बि 10% वाध कई वई आहे। सिहत जे शोबे जे लाइ 393 अरब 16 करोड़ रुपया रखिया विया, जिन मां 148 अरब 17 करोड़ रुपया वॾनि इस्पतालुनि ऐं सिहत जे मर्कज़नि खे ग्रांट्स तौरु फराहम कया वेंदा। बलदियाती ख़िदमतुनि जे लाइ 306 अरब रुपया, अमन अमान जे लाइ 222 अरब 30 करोड़ रुपया, ज़रात ऐं ख़ुराक लाइ 61 अरब 90 करोड़ रुपया ऐं समाजी ख़िदमतुनि जे लाइ 57 अरब 90 करोड़ रुपियनि खां वधीक मुख़्तस कया विया आहिनि। ग़रीब ऐं कमज़ोर तबिके जी मदद जे लाइ हुकूमत नओं फलाही मनसूबनि जो पिणु ऐलान कयो आहे। बेनज़ीर हारी कार्ड, किचन गार्डिंग किट्स, बेनज़ीर हाउसिंग सेल, पीपल्स आईटी प्रोग्राम ऐं नंढनि कारोबारनि जे मदद जे लाइ 80 रुपया रखिया विया आहिनि। स्पेशल माण्हुनि जे लाइ मददगार औज़ारनि, लेंस सपोर्ट ऐं गोगल ग्लासिस जी फराहमीअ जे लाइ पिणु 1.1 अरब रुपया मुख़्तस कया विया आहिनि। ॿिए पासे बजट इजलास दौरान अपोज़िशन जमायत सख़्त एहतजाज कयो। MQA पाकिस्तान बजट तकरीर जो बाइकाट कयो, जॾहिं त अपोज़िशन अॻवान अली ख़ुर्शीदीअ बजट ते एतिराज़ कंदे चयो त अपोज़िशन खे एतमाद में न वरितो वियो आहे ऐं जमहूरियत जी रवायत जी पासदारी न थियण सबबि एहतजाज जारी रहंदा। हिन बजट में तालीम, सिहत ऐं समाजी तहफ़ुज़ खे तरजीह ॾियण सां अवामी भलाई ते ध्यानु ॾिनो वियो आहे, पर तरक़ियाती बजट में घटिताई मुस्तक़बिल जे तरक़ियाती मनसूबनि ते असर विझी सघे थी। हुकूमत लाइ वॾो चैलेंज हूंदो त मुख़्तस कयल फंडनि खे शफ़ाफ़ नमूने इस्तेमालु कंदे अवाम ताईं हक़ीक़ी

0: जो हिन वक्त जो सिंध राउंडअप बे आचर जे सिंध राउंडअप तई गुलाब खान भेण के दिंदा इजाजत अल्लाह निगहबान।
1: सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान के जरो नाहे यजीद के इश्क जो आजार वसण जो करार असल इमाम मनसी
2: जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम ए शानदार कैरियर मौको पेश कयो वने थो। जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार ए जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्त तलब कई वनन थियो। जीए एफएम एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जो मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप ए ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतू रखे इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौको आ है। देर न करियो, अभी अप्लाई करियो। जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।
1: सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान के जरो नाहे यजीद के इश्क जो आजा वसण जो करार असल इमाम मनस।